कमसा जगा मिदिया मारू डालता है कमाल तो आप तुम ही डरू आप गुंदवार बगार अंजाव यान नाल यान तो सिदान लबुआ साल कारी बुआ तुम अंगात बापु पुआ तंगियन गिला चपुआ